गुरु प्यारी साध संगत जी, इतनी हाजरी प्रवान करते हुए भुला चुका दी किवा करना। असीस बख्शे सारे गुरमुख प्यारे रब वर्गिया संगत आप जुड़ बैठे हो। सतगुर के चरणों में अरदास करना, सतगुर अपना मेहर भरिया आसीस ते हथ रख के तरस करके सेवा लेंदे रहन। आओ सारे नंद सब का जाप करके समाप्त।

सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तुर

हरे रंग प्रभु कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नव निध प्रभु कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध

इस देही को बहु साधना करे मन ते कभू न बिखे आ टरे जल तो वह बहु देह नीत शुद्ध कहा हुए काची पीत।

सो दूर पर आने छोड़ जाए तिसका सराम कर संग सहाई तिस पर हरे चंदन लेप उतारे तोहे गर्तव प्रीत भस्म संग होए।

करी सलोग। काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए हमेव, नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदि। जिह प्रसाद छती है अमृत खाए, तिस ठाकुर कौ राख मन माहे। जिह प्रसाद सुगंधर तन लावे, तिस कव सिमरत परम गत पावे। जिह प्रसाद बसे सुख मंदर, तिसे त्याय सदा मने अंदर। जिह प्रसाद गृह संग सुख बसनाट।

उठत बैठत सद तिसह त्याई तिसह त्याय जो एक अलख है हाँ नानक तेरी रख है जिह प्रसाद करहे पुन बहुदान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान।

सुन रसै साध के संग सुनो हर नाव साध संग हर के गुण गाव साध के संग नमन ते बिसरै साध संग सर पर निहतरै साध के संग लगे प्रभु मीठा साधु कै संग घट घट नीठा साध संग पै अज्ञकारी साध संगत पई हिमारी साध के संग मिटे सब रोग नानक साध पीते संजोग साध की महिमा वेदना जाने देता सुनहते तब खियाने साध की उपमा ते गुण ते दूर साध की उपमा रही पहर पूर साध की शोभा काना ही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा उते उति साध की शोभा मूजते मूति साध की शोभा साध बने आई नानक साध प्रभु भेद न पाई श्रोक मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेख है एक बिन कोय नानक लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी

नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी नाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब प्रभात, ब्रह्म ज्ञानी का सगले कार, ब्रह्म ज्ञानी आवृंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा, ब्रह्म ज्ञानी बणी नानक, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनि श्लोक।

प्रकारस्पति कई कोट होए पुजारी कई कोट अचार विहारी कई कोट पह तीर्थवासी कई कोट बन ब्रह्मे उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते

नारंग किश त्रिहुगुण ते प्रभ भिन्न तिसे बुझाए नानका जिस होवे सो प्रसन्न अष्टपदी अविनाशी प्रभ मन में राख मान की तू प्रीत त्याग तिह ते परे नाही किस को सर्व निरंतर एको सोए आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर गही सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा दान दयाल भगसान सातरे की चरणी पाव नानक कह मन इहो नराव मन सब पूर्ण सरना जोग जो कृपा सोई हो घरन भरन जागा नेत्र फोर दिसका मंत्र ना जाने होर आनंद रूप मंगल सद जाग कहे सर्व थोग सुनिए करता कह राज महरा जोग मह जोगी तप मैं तपीसर गृहत मैं भोगी त्याय

प्रगटाय नेकी कीरी मह कल राख है भस्म कर लश्कर कोट लाख है जिसका साधन काटते आप ताको राख दे कर हाथ।

का संग नाम रस जो जन तृप्ता ने मन तन नाम ही नाम समानी उठ बैठ सोत नाम कहो नानक जन कै सदकाम बोलो जाह जेह दिन रात रब अपने जन कीनी दात करहे भगत आत्म कह चाहे प्रभु।

लाखे शोक बिसरेज बिखते काटे जन्म जन्म का टूटा गांड गुर पूरे ताते है बजाया प्रभ प्रणा जन त्याया साजन संत करो काम आन त्याग जप हो हर नाम।

कहो गणी। जब एक हरग में पार तब नरक सुर्ग कहो कौने उतार। जब निर्गुण प्रभु सह सुपाए तब शिव सकत कहो कित ठाए। जब आपे आप अपनी जो तरे तब कम निडर कमन कद डरे। आपन चलत आप करने हर नानक ठा गुर अग में अपार। अविनाशी सुख अपने आसन तह जन्म मरण कहो कहा विनाशन। जब पूरन करता प्रभु सोए तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अवगत गोचर प्रभु का तब चित्र गुप्त के भूत लेखा। जब नाथ निरंजने गोचर गादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे। अपने आप ही तर जा नानक अपने रूप आप ही ओ प्रजा। जह निर्मल पुरख पुरख पद होता तह बिन मैल कहो क्या तोता।

मिटै। प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै, जिस प्रभ राखे तिस नाही दुख। नाम जपत मन उत सुख, चिंता जाए मिटै अहंकार। तिस जन को कोई न पुंत्र हार, सिर उपर ठाडा गुरसूरा। नानक तां के कार्ज पूरा, मत पूरी अमृत।

कभी सास संजना काबे खनसा ब्रह्म संजना के हृदय सब धर्म संत जना सुनहे शुभ बचन सर्व्यापी राम संग रचना।

भवन अपेख ऐसा राम निरंजन हुए जेको मन जाने मन कोए पंच प्रमान पंच प्रधान पंचे पावे दुर्गे मान पंचे सोहे दर्रा जान पंचा का गुरु एक ध्यान जेको कह करे विचार करते काय करने नाही सुमार तौल धर्म दया का पूत संतोख था ब्रख्या जन सूत जेको बुझै होवे सचियार तबले उपर केता भार धरती होर पराय होर होर तस्ते भार तले कमन जोर जी आजाद रंगा के नाम सबना लिखिया बुढ़ी कलाम यो लेखा लिख जाने कोए लेखा लिखिया केता होए केता तान सवाल्य रूप केती दात जाने कौन खूत किता पसावे को कवाओ तिस्ते हुए लख दरियाओ कुदरत कमन कहा विचार वारिया ना जावा एक बार जो तुद भावे साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुखवेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूरम पक्षार असंख मोल बलाए तार कुदरत कवन का विचार वारिया ना जावा एक बार जो तुद भाव साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंगल वट हत्या कमाहे असंग पापी पाप कर जाहे असंग कूड़ियार कूड़े फिराहे असंख मलेश मल पख खाहे असंख निंदक सिर करहे पार नानक नीच कहा विचार वारिया ना जावा एक बार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाम असंख थाम अगम अगम असंख लो असंख है सिर पार हो अखरी नाम अखरी साला अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखण बोलण बाण अखरा सिर संजोग बखाण जिन एह लिखे तिसर डाहे जि फुरमाहे तिब तिब पाहे जेता कीता तेता नाहु मिण नावे नाही को थाहु कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक बार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार परिये हथ पैर तन देहे पानी धोतै उतर सो खेहे मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लइए ओह धोए भरिए मत पापा कै संग ओ धोपै नावै कै रंग पुन्नी पापी आखण नाहे कर कर करना लिख लै जाहो आपे बी जापे ही खाहो नानक हुक्मी आवो जाहो तीर्थ तप दया दत्तदान जेको पावे तिलका मान सुनिया मनिया मन कीता भाव अंतरगा तीर्थ मलनाओ सबगुण तेरे मैं नाही कोए बिन गुण कीते भगत न होए स्वस्थ आत बाणी बरमाओ सत सुहान सदा मन चाओ

आखें ईसर आखें सिद्ध आखें किते किते किते बुद्ध आखें दान आखें देव आखें सोर डार मन जन सेव किते आखे आखण पाहे किते कह कह उठ उठ जाहे इते किते होर करे ता आख ना सकह के ही के जीवड़ भावे तेवड़ होए नानक जाने साचा सोए जे कु आखे बोल बिगाड़ तलखिए सिर गावारा गावार सो दर केहा सो घर केहा जित बह सर्ब संभाले वाजे नाद अनेक संखा किते बामण हारे किते राग परि स्यों कहियन

आसन लोए लोए पंडार जो किश पाया सो एका वार कर कर वेख सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तसा आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको बेस एक दूजी भाव लखो है लखो वह लख भीस लख लख गेड़ा आखी आह एक नाम जगदीस एतराह पत पबड़िया चढ़िया हुए एकीस सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ा ठीस आखन जोर चुपै नह जोर जोर ना मंगण देना जोर जोर ना जीवन बर नह जोर जोर ना राज माल मन सोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगति छुटै संसार जिसत जोर कर वेख्या सोए नानक उत्तम नीच ना कोय राती रुती तित्ती वार पवन पाणी अग्नि पाताल तिसवी धरती थाप रखी धर्मसाल तिसवी जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तथै सोहन पंच प्रमाण नदरी करम बवाए निशान कच पकाई उथ पाए नानक गया जापै जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म केते पवन पाणी वै संतर केते कान महेश केते ब्रह्मे का हर्त घटिया है रूप रंग के वेश केतिया कर्म भूमि मेर केते केते तोब देश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुधनाथ केते केते देवी वेश केते देव दान मुन केते केते रतन समुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात नरेंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत न अंत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथे नाद विनोद गूढ़ आनंद सर्म खंड की बाणी रूप तिथे घाट ते घड़िए बहुत अनूप ताकिया गल्ला कथिया ना जाहे जेको कह पिछै पछताए तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे घड़िए सुरा सिद्धा की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तथे होर ना कोई होर तथा जोद महा बल सूर तिन मह राम रहया भरपूर तथे सीतो सीता महमा माहे तागे रूप ना कथने जाहे ना ओहे मरहे ना ठागे जाहे जिनके राम वसै मन माहे तथे भगत वसहे के लो करहे आनंद सच्चा मन सोवे सच खंड।

प्रसाद नमो नरकनाशे सदैव प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अभंगं विभूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपेन्द्रवाद विभूते अनंगी अनामे त्रभंगी त्रकामे त्रभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पोत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तातर माते न जात न पात नरसाकं श्री गय मितो अमीक सदैव प्रवाह अजाह अजाह भगवती शांत त्व प्रसाद के जाहर हजूर है के हाजर हजूर है मैं सुन सलाम है समस्त कलाम है के साहिब दमाग के सुन चरा के कामल करीम है के राज कर हिम है के रोजी दहद है के राज कर हिंद है करीमल कमाल है सुन जमाल है गरीबल खराजा गरीबल निवाजा हरीफुल शिकन है हरासल फिकन है कलंकंग प्रणास है समस्त निवास है अगंजुल गरीम है रजाय कर हिम है समस्त जुबा है के साहिब किरा है के नरकंग प्रणास है बहस्तुल निवास है के सरबुल गबन है मैसुल रबन है तमामुल तमीजा समस्तुल अजीजा परंग परमीशा समस्तुल अदीसा अदेसुल अलेख अमेसुल अभेख है जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है के जुरत जमाल है के चलंग प्रकाश के मित्तो सुबास के अजब स्वरूप के मित्तो विभूत है के मित्तो पसा है के आत्म प्रभा है के अचलंग अनंग के

कंठकुमारिया दुर्गरम पाया तुद जन काओ से नाम हर के लागे काह नानक तह सुख हुआ तुदकर अनहद बाजे साची लबै बिन देहे नमाणी देह नमाणी लबै बाजो क्या करे बेचारिया तुद बा समरात कुए नाही कृपा कर बनवारिया सनो एसनो अर्थाव नाही शब्द लाग सवारिया कहे नानक लबै बाजो क्या करे बेचारिया आनंद आनंद सबको कहे आनंद गुरु ते जाणिया जाणिया आनंद सदा गुरते कृपा करे प्यारिया कर कृपा करे विकटे ज्ञान रंजन सारिया अंदरों जनका मोह टुटा तनका शब्द सच्चा सवारिया कहे नानक एहो आनंद है आनंद गुरते जाणिया बाबा जिस तू दे सोई।

कीर्तन है, दयाल पुरख भगवान है, नानक लिपत ना माया। पाहे बलंदड़ी बुझ गई,

पावड़ी जा प्रभ पए दयाल न व्यापै माया कोट अघा गए नाश हर एक त्याया निर्मल पए शरीर जन धूरी नाया

अमृत वचन ने जे संसार विच वेखिए ना ता नाम तो बिना संसार दुखी है। इथों तक भावे सारी सृष्टि का राजा भी बन जे, हुक्म भी चलदा होवे, कृपालू दा तार जी कहिंदे दुखी हो भी जे, तुसीं कहो भी राजा महाराजा किवें दुखी है, तां गुरु अर्जन देव कृपालू दा तार गुरदेव जी दे अमृत वचन ने सागल सृष्ट को राजा दुखिया, गुरु दुखां नूं कटदा है। सागल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। ते जदों दुखां दा भरिया होया जीव गुरु कोल आउंदा, गुरु दुख हर दिंदा है, दुख हरनम दुखां दा नास कर दिंदा है। फरीदा मैं जानिया दुख मुझकू, दुख सवाय जग ऊचे चढ़ के देखिया, ता घर घर एहा अग, दुख किया पंडा खुलियां, सुख ना निकलियो कोए, दुखी दुनी सहेड़िया जाए ता लगे दुख, नानक सच्चे नाम बिन किसे न लथो भुख, रूपी भुख ना उतर है जा देखा ता भुख, जेते रस शरीर के तेते लगे दुख। लगे हुए दुखा नु गुरु कट दिंदा है, हर नंग नाश करना कदों उच्चर नंग नाम कीर्तन है। जिस वेले ए जीव जड़ा गुरु दे नाम नु गुरु दी कीर्ति नु करदा है उचारदा है, हर कीरत साध संगत है। सिर करमण कै करमा कहो नानक तिस भयो प्राप्त, जिस पुरब लिखे का लहना। मेरे गरीब निवास सच्चे पातशाह जी कृपा करदे ने कीर्ति करदे आ।

पैतीस अनाखीण हो। इको जे लाख लखो अलख है, एक एक कर वर्ण्यो। गुर अमरदास जालप भणे तू एक लोड़ है एक मन्यो। करोड़ा पाप जेड़े ओ कटे जांदे ने केवल एक नाम दे नाल। निर्मल भये शरीर जन धूरी नहाया, जेड़े साध संग दे चरण धूड़ विच इशनान करदे ने जां गुरु दे शब्द बारे मन दा इशनान करदे ने उन्हां दे पाप जेड़े ने चले जांदे, ओ निर्मल हो जांदे ने, ओ सेवक बन जांदे ने। तप्पड़ झाड़ बछाए धूड़ी नाया, गंगा जमुना गोदावरी सुर सती ते करे उधम धूर साधु की ताई। किलविख मैल भरे परे हमरे विच, हमरी मैल साधु की धूर गवाई। साध संग दी चरण धूड़ जड़ी है करोड़ा करोड़ा पापा नू कट दिंदी है। तां गरीब निवास जी कहिंदे निर्मल भए शरीर निर्मल हो जांदा है, संगत विच बख्शियां रूहां मिलदियां ने। चरण धूड़ दा सुरमा जे कर विच नैणां दे पावे तू, लोड़ ना होर ममीरे संदे।

दुख हरनं उचरनं नाम कीर्तन है, दयाल पुरख भगवान है, नानक लिपत न माया। दया करनं दुख हरनं उचरनं नाम कीर्तन है, दयाल पुरख भगवान है,

हर जप सिमर स्वामी सोई वेद सिमरत कथा सासत भगत करह विचार मुक्त पाया साध संगत बिन सजाए अंधार चरण कमल आधार जनका रास पूंजी एका तान मान दीवान साचा नानक की प्रवटेका चरण कमल आधार जनका

सदगुरु से मो पर जले करी मायो दासा रहो गुरमुख कर्म कमावे पीछे हर बैराग आनंद ऐ निज भक्त करे दिन राति हमें मारने चंद वड्डे पाल सत्संग

0: सतगुरु जी का कोटान कोटान शुकराना है। सतगुरु जी ने आप सहाई होकर कृपा करके सारे कार्ज रास किए ने। दोनों ही परिवारों को सुभाग जोड़ी में बहुत बहुत बधाई है जी। सतगुरु जी कृपा करें, गृहस्थ जीवन में सतगुरु जी सारे सुख प्रदान करें। गुरु चरणा सरदास है जी फुल चुक की खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा
1: वाहिगुरु जी की फतह। ठाकुर तुम बहरदास जियो।

भाई मिल हर हर कथा करह, हर हर नाम बोहित है कल जुग, खेवट गुर शब्द तरह। आवो संत मिलह मेरे भाई, मिल हर हर कथा करह, हर हर नाम बोहित है कल जुग, खेवट गुर शब्द तरह। मेरे मन हर गुण हर उच्च रहो, मस्तक लिखत लिखे गुण गाए।

गृहस्थे गृहस्थ धर्माता एक शब्दी बहुरूप अवतूता कापड़ी कवते जागूता एक तीर्थ नाता निर्वार वर्ती आपरसा एक लोकना देव है दर्शा एक मन ही ज्ञाता घाट न किन्ही कहाया।

अंतकाल पछता सी अंदुले जा जम पकड़ चलाया साब किश अपना कर कर राखिया खिन मैं भया पराया बुद्ध वसरजी गई सियाणप कर अवगण पछोताए कहु नानक प्राणी तीजै पहरै

मन उठे श्री धर पाए मंगल गाए इच पुन्नी सतगुरु तुठे लाड़ लीने लाए नाव निध पाए नाव सर्वस ठाकुर दीना नानक सिख संत।

जिनको साधु संग नाम हर रंग तिनी ब्रह्म विचारिया जियो। ब्रह्म विचारिया जन्म सवारिया पूर्ण कृपा प्रभ करी कर गह लीने हार जसो दीने जो न तावै नह मरी।

जप तापा गवन किया धरती परमाता एक खिन हृदय सांत न आवै जोगी बहड़ बहड़ उठता वै जियो कर कृपा मोहे साध मिलाया मन तन शीतल धीरज पाया प्रभ अविनाशी बसिया कट पीतर हर मंगल नानक गावै जियो माज

गुरमुख मधुसूदन निस्तारे गुरमुख संगी कृष्ण मुरारे दयाल दमोदर गुरमुख पाइए होरत किते ना पाती जियो निरहारी केशव निरवैरा कोट जना जाके पूजे पैरा गुरमुख हृदय जाके हर हर सोई भगत अकाती जियो अमोग दर्शन बेअंत अपारा बड़ समरथ सदा दा तारा गुरमुख नाम जपिए तित तरिए गत नानक विरली जाती जियो माज महला पंजवा कहिया करना दिता लेना गरीबा अनाथा तेरा माणा सब किछ तू है मेरे प्यारे तेरी कुदरत को बल जाई जियो पाणे उजड़ पाणे राहा पाणे हर गुण गुरमुख गवाहा पाणे परम पवै बोजूनी सब किछ तिसै रजाई जियो ना को मूर्ख ना को स्याणा वरतै सब किछ तेरा पाणा

तुम सम्राट सदा सुखदाते, सबको तुम ही ते वरसावै, अवसर करहो हमारा पूरा जियो, दर्शन तेरे पवन पनीता, आत्म गढ़ बेकमति नाही जीता, तुम दाते तुम पुरख विधाते, तुद जेवड़ अवरना सूरा जियो, रेण संतन की मेरे मुख लागी, दुरमत विनसी कुबुद्ध अभागी, सच कर बैस रहे गुण गाए, नानक बिनसे कूरा जियो, माज महला पंजवा, बिसरना ही ये वरदाते, कर कृपा भगतन संग राते, दिन सरैन जियो तुद त्याई, एहो दान मोहे करना जियो, माटी अंधी सुरत समाई, सब कछ दिया पलिया जाई, आनंद विनोद चोज तमासे, तुद भावे सो होना जियो, सुरत जिसदा दिता सब किश लैना, शक्ति अमृत भोजन खाना, सेज सुखाली शीतल पवना, सहज केल रंग करना जियो, सा बुद्ध दीजै जित विसरै नाही, सा मत दीजै जित तुद ते आई, सास सास तेरे गुण गावा, ओट नानक गुर चरना जियो, माज महला पंजवा, सिफत सलाहन तेरा हुक्म रजाए, सो ज्ञान त्यान जो तुद पाई, सोई जप जो प्रभ जियो पावै, भाणे पूर ज्ञान ना जियो, अमृत नाम तेरा सोई गावै, जो साहिब तेरे मन पावै, तू संतन का संत तुम्हारे, संत साहिब मन माना जियो, तू संतन की करें प्रतपाला, संत खेलै तुम संग गोपाला, अपने संत तुद खरे प्यारे, तू संतन के प्राणा जियो, उन संतन कै मेरा मन कुर्बाने, जिन तू जाता जो तुद मन भाने, तिन कै संग सदा सुख पाया।

हर कृपा नानक गुण गावे राखो सरमिया साड़ी जियो माज महला पंजवा चरण ठाकर के हृदय समाणे कल कलेश सब दूर पियाने सात सुख सहज धुन उपजी साधु संग निवासा जियो लागी प्रीत ना टूटे मूले हर अंतर बाहर रहे भरपूरे सिमर सिमर

रहे जन तेरे सतगुर किया दिलासा जियो जिसका साथ इसते फल पाया कर कृपा प्रभ संग मिलाया आवण जान रहे बड़भागी नानक पूर्ण आसा जियो माझ महला पंजवा मीह पया परमेसर पाया जी जंत सब सुखी वसाया गया कलेश पया सुख साचा हर हर नाम संभाली जियो जिसके से तिन्हीं प्रतपारे पार ब्रह्म प्रभ पै रखवारे सुनी बेनंती ठाकर मेरे पूर्ण होई काली जियो सर्व जिया को देवनहारा गुर प्रसादी नदर निहारा जल तल मही अल सप्त तिपताने साधु चरण पखाली जियो मन के चिप जावन हारा सदा सदा जाई बलिहारा नानक दान किया दुख पंजन रते रंग रसाली जियो माज महला पंजवा मन तन तेरा तन पी तेरा तू ठाकर स्वामी प्रभ मेरा जियो पिंड सब रास तुम्हारी तेरा जोर गोपाला जियो सदा सदा तू है सुखदाई निव निव लागा तेरी पाई कार

सोई सुख सहना जिते रखे बैकुंठ तुताई तू सबना के प्रतपाला जियो सिमर सिमर नानक सुख पाया आठ पैर तेरे गुण गाया सगल मनोरथ पूर्ण होए कदे न होए दुखाला जियो माज महला पंजवा पार ब्रह्म प्रभ मेघ पटाया जल तल मई अल दै दिस बरसाया सांत पई बुझी सब दिसना आनंद पया सब ठाई जियो सुख दाता दुख भंजन हारा आपे बख्श करे जी सारा अपने किते नो आप प्रतपाले पै पैरी तिसै मनाई जियो जाके सरण पया गत पाई है सास सा सरनाम ते आई है तिस बिन होर न दूजा ठाकर सब तिसै किया जाई जियो तेरा मान तान प्रभ तेरा तू सच्चा साहिब गुणी गहेरा नानक दास कह बेनंती आठ पैर तुद त्याई जियो माज महला पंजवा सबे सुख पए प्रभ तुटे गुरपुरे के चरण मन बुटे सहज समाद लगी लव्यंतर सो रस सोई जाने जियो अगमे गोचर साहेब मेरा घट घट अंतर वरतै नीरा सदा लिपत जिया कदाता को बिरला आप पछाणे जियो तब मिलने की ए निशानी मन इको सच्चा हुक्म पछाणी सहज संतोख सदा तिपतासे आनंद खसम कै पाणे जियो अति दित्ति प्रभ देवन हारे जन्म मरण रोग सब निवारे नानक दास किए प्रभ अपने हर कीर्तन रंग माणे जियो माज महला पंजवा किन्नी दया गोपाल गुसाई गुर कै चरण वसे मन माई अंगीकार किया तिन करतै दुख का डेरा ढाया जियो मन तन वसिया सच्चा सोई बिखड़ा तन ना दिसै कोई दूत दुश्मन सब सज्जन होए इको स्वामी आही आ जियो जो किश करे सो आपे आपै बुद्ध सियाणप किश न जापै अपनिया संतां नो आप सहाई प्रभ भरम भुलावा लाहिया जियो चरण कमल जन काय आधारो आठ पहर राम नाम वपारो सहज आनंद गावै गुण गोविंद प्रभ नानक सर्व समाहया जियो माज महला पंजवा सो सच मंदर जित सच त्याई है सोरदा सहेला जित हार गुण गाई है सात अर्थ सुहावी जित वसै हर जन सच्चे नाम बिटो कुरबानो जियो सच बड़ाई कीम न पाई कुदरत कर्म न कहना जाई त्याए त्याए जीवै जन तेरे सच शब्द मन माणो जियो सच सलाहण वड़ भग पाई है गुर प्रसादी हर गुण गाई है रंग रते तेरे तुद भावै सच नाम निशानो जियो सच्चे अंत न जाने कोई थांत नंतर सच्चा सोई नानक सच त्याई है सदी अंतर जामी जानो जियो माज महला पंजवा रैन सुहावड़ी दिन सुसहेला जापे अमृत नाम संत संग मेला घड़ी मुहूर्त सिमरत पल संजै जीवन सफलत ताई जियो सिमरत नाम दुख सब लाते अंतर बाहर हर पग साते पै पौ परम खोया गुरपुरै देखा सबनी जाई जियो प्रभ समरत वड ऊचे अपारा नौ निद नाम परे भंडारा आदि अंत मद प्रभ सोई दूजा लवै न लाई जियो कर किरपा मेरे दीन दयाला जाचक जाचै सादर वाला देह दान नानक जन मंगै सदा सदा हर त्याई जियो माज महला पंजवा एथै तू है आगै आपे जी जंतर सब तेरे थापे तुद बिन अवर ना कोई करते मैं तारे ओट तुम्हारी जियो रसना जप जप जीवै स्वामी पार ब्रह्म प्रभ अंतर जामी जिन सेव्या तिने सुख पाया सो जन्म न जू

आप पसारा लिप नहीं जग जीवन दाते दर्शन दिते लहन विजोगा जियो अंचल लाए सब शिष्ट त्राई अपना नाउ आप जपाई गुरबोहित पाया कृपाते नानक तुर संजोगा जियो माज महला पंजवा सोई करना जे आप कराए जिते रखै सा पली जाए सोई सियाणा सो पदवंता हुक्म लगे जिस मीठा जियो सब परोई कत धागै जिस लाए लए सो चरनी लागै ऊंद कमल जिस होए प्रगासा तिन सर्ब रंजन डीटा जियो तेरी महिमा तू है जाणै अपना आप तू आप पछाणै हौ बलिहारी संतन तेरे जिन काम क्रोध लोभ पीठा जियो तू निर्वैर संत तेरे निर्मल जिन देखे सब उतरै कलमल नानक नाम ते आए त्याए जीवै बिनसिया भ्रम पौ तीठा जियो माज महला पंजवा झूठा मंगण जे कोई मांगै जिस को मरते कड़ी न लागै पार ब्रह्म जो सदी सेवै सो गुर मिल ने चल कहना प्रेम भगत जिसकै मन लागी गुण गावै या दिन नित जागी बाह पकड़ तिस स्वामी मिलै जिसकै मस्तक लैणा चरण कमल भगता मन बुटे विण परमेसर सगले मुठे संत जना की तोड़ नित बांचै नाम सच्चे का गहना उठत बैठत हर हर गाई है जिस सिमरत वर नहि चल पाई है नानक को प्रभु होए दयाला तेरा कीता सहना राग माज मा अष्टपदियां महला पहला घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद शब्द रंगाए हुक्म सवाए सच्ची

पीला काला बेदा करी पुकार हो एक चील रहा मालत हरे दुर्मत मत विकार ना हो ना मैं ना होवा नानक शब्द विचार महला पहला वातर पखाल पखाले काया आपे संजम होवै अंतर मैल लगी नहीं जाना बाहरों मल मल धोवै अंधा भूल पिया जम जाले वस्त पराई अपनी कर जाना होमे विच दुख काले नानक गुरमुख होमे तुटै ता हर हर नाम त्यावै नाम जपे नामो आराधे नामे सुख समावै पवड़ी काया हंस संजोग मेल मिलाया तिन ही किया वियोग जिन पाया मूर्ख भोगै भोग दुख सबाया सुखों उठे रोग पाप कमाया हर को सुख वियोग अपाए खपाया मूर्ख गणत गणाए झगड़ा पाया सतगुर हाथ नबेड़ झगड़ चुकाया करता करे सो होग ना चले चलाया श्लोक मोहल्ला पहला कूड़ बोल मुरदार खाए अवरी नो समझावन जाए मुठा आप मुहाए साथ है नानक ऐसा आगू जापै मोहल्ला चौथा जिस दे अंदर सच है सो सच्चा नाम मुख साचा लाए ओ हर मार्ग आप चलदा होर ना नो हर मार्ग पाए जी अगे तीर्थ होए ता मल लह छप्पड़ नहाते सग भी मल लाए तीर्थ पूरा सतगुरु जो आंदन हर हर नाम त्याए ओ आप छुटा कुटां बस्यो दे हर हर नाम सब सिरठ छडाए जन नानक तिस बलहारण है जो आप जपै अवरा नाम जपाए पौड़ी एक कंध मूल चुण खाहे वण खंड वासा एक भगवा वेस कर फिरे जोगी सन्यासा अंदर तृष्णा बहुत साधन भोजन की आसा व्यर्था जन्म गवाए ना गिरही ना उदासा जम काल सिरो ना उतरा त्रिबद मनसा गुरमती काल न आवै नेड़ै जा होवै दासन दासा सच्चा शब्द सच मन घर ही माहे उदासा नानक सतगुर सेवन आपना से आसा ते निरासा श्लोक मोहल्ला पहला जे रत लगै कपड़ै जामा होए पलीत जो रत पीवे मानसा तिन क्यों निर्मल चीत नानक नाओ खुदाए का दिल हछे मुख ले अवर दवाजे दुनी के झूठे अमल करे हो महला पहला जाहो नाही ता क्या आखा क्यों नाही क्या होवा कीता करना कहे कथना भरिया पर पर धोवा आप न बुझा लोक बुझाई ऐसा आगू होवा नानक अंधा हुए कह दसे राह सब समहाए साथ है।

खरे खजाने पाई है, खोटे सटी है बाहर वार, खोटे सच्ची दरगह सुटी है, किसे आगे करे पुकार, सतगुर पिछे भज पवे एहा करणी सार, सतगुर खोट्यों खरे करे शब्द सवारण हार, सच्ची दरगह मनियन गुर के प्रेम प्यार, गणत तिना दी को क्या करे जो आप बख्शे करतार। श्लोक मोहल्ला पहला। हम जेर जिमी दुनिया पीरा मसाए का राया, मेर अवद बादशाह आप जू खदाए, एक तू ही एक तू ही। मोहल्ला पहला। ना देव दान वा नरा, ना सिद्ध साध का तरा, आते एक दिगर कोई।

लाभलो मजकूर कमावै बत उठावै पारो तू काया मैं रुलदी देखी ज्यों तारे ऊपर चारो सुन सुन सिखा मारी सू

कली का जन्म चंडाल कै कर हो नानक ना बिना को मुक्त ना हो गौड़ी महला तीजा गुआ री सच।

जियो, हर विटड़ियो सदा कोले जियो। बस मेरे प्यारे आ, बस मेरे गोविंदा, हरे कर कृपा मन बस जियो। मन चिंदड़िया फल पाया मेरे गोविंदा, गुरपूरा वेख भगत सजियो। हर नाम मिलिया सुहागणी मेरे गोविंदा, मन आंदन आनंद रस जियो। हर पाइड़ा वड्डा पागी मेरे गोविंदा, नितला लाहा मन हस जियो।

मेरा मन तन बहुत बेरागया मेरे गोविंदा हर बाजो तन कमलैनी जियो संत जना मिल पाया मेरे गोविंदा मेरा हर प्रभ सज्जन सैनी जियो हर आए मिले अजग जीवन मेरे गोविंदा मैं सुख विहानी रैनी जियो मैं मेलो संत मेरे हर प्रभ सज्जन मैं मन तन भूख लगाईया जियो हऊ रह न सकियो बिन मेर देखे मेरे प्रीतम मैं अंतर बिरू हर लाइया जियो हर राया मेरे सज्जन प्यारा गुर मेले मेरा मन जवाईया जियो मेरे मन तन आसा पूरिया मेरे गोविंदा

सब सत्कर जाते सत हनुमान लगे नारते। बाबे मार्ग टेढ़ा चलना सीधा छोटा पोटा बनना द्वासरिया का खत्म प्राप्त हो देश मेले नानक स्वमुता हो गौड़ी ग्वारी मोहल्ला पंजवा। कलयुग में मिल आए संजोग जितर आ गया तिचर भोग गया भोग जलना पाई है राम सनेही करत संजोग सती उठ हो राव देखा देखे मन अड़ जल जाइए प्रय संग न पावे बजोन पवाइए सिर संयम प्रया गया मान तिस नारी को दुख ना जमाने रा।

देव तस्य परमन कर्तु वासा जुगाद जंका परवासा जंके प्रीत सदा सुख हो नानक गावै गुर मिल सोए गौड़ी महला पंजवां।

तुम्हारा अंतरधामी सम्राट पुरुष पार ब्रह्म स्वामी हम दास है तुम ठाकुर मेरे मानवत नानक प्रभ तेरे गौड़ महल्ला पंजवा जाको तुम पाए सम्राट अंगा तांको कछ नाही का लंगा माधो जाको आयास तुम्हारी तांको कछ नाही संसारी

मिलत तिलता जलत अग्नि मिलत नीर जैसे बारक मुख खीर जैसे रण में सखा परात जैसे भूखे भोजन मात जैसे किरख बरस मेगा जैसे पालन सरण सेंगा गरड़ मुख नहीं सरपत रास सुआ पिंजर नहीं खाए बलास जैसो आंडो हृदय माहे।

मेरे बिखे हंत मुक्त जुगत आया निदान प्रभ दयाल मोहे देवो दान नानक को प्रभ दया तार चरण संतन के मेरे हृदय मजार माली गौड़ा महला पंजवा सब कै संगी नाही दूर करन करावन हाजरा हजूर रहाउ सुनत जियो जास नाम दुख बिनसै सुख कियो बिसराम सगल

सतगुर प्रसाद हर समरथ की सरणा जियो पिंड धन रास मेरी प्रवेक कारण करना राव सिमर सिमर सदा सुख पाई है जीवन का मूल रब रहा सर्वत ठाई सूखम स्थूल आल जाल विकार तज सब हर गुणा नित गाओ कर जोड़ नानक दान मांगे देहो अपना नाओ माली गौड़ा महला पंजवा प्रभ समरथ देवे अपार कौन जाने चलत तेरे किछ अंत नाही पार राव एक खिने थाप उथाप दा खड़ पन करने हार जेत की ने उपार जना प्रभ दान दे दातार हर सरने आयो दास तेरा प्रभु जगम मुरार काड लेहो भव जल बिखमते जन नानक सद बलिहार माली गौड़ा महला पंजवा मन तन बस

तेती रस रस चोग चुगै नित फासै छूट समूड़े कमण गुणी काया आरण मन विच लोहा मन काया आरण मन विच लोहा पंच अगण तित लाग रही कोयले पाप पड़े तिस उपर मन जलिया सन्नी चिंत पई भया मनूर कंचन फिर हुवे जे गुर मिले तनिहाओ एक नाम अमृत ओह देवै तो नानक त्रिरस देहा मारू महला पहला बिमल मजार बसस निर्मल जल पद्मन जावल रे पद्मन जावल जल रस संगत संग दुख नहीं रे दादर तू कबे ना जान सरे बक्स सिबाल बसस निर्मल जल अमृत ना लख सरे राव बस जल नित ना वस्ते अली अल मेर चचा गुन दे चांद कुमुंदनी दूरो निवसस अनपव कारण ने अमृत खंड दूध मद संचस तू बन चातर रे अपना आप तू कबू ना छोड़स पिसन प्रीत ज्यो रे पंडित संग वसे जन मूरख आगम सास सुने अपना आप तू कबू ना छूड छोड़स सुआन पूछ ज्यो रे एक पाखंडी नाम न राचे एक हर हर चरणी रे पूर्व लिखिया पावस नानक रसना नाम जाप रे मारू महला पहला सलोक पतत पनीत असंख है हर चरणी मन लाग अड़सठ तीर्थ नाम प्रभ नानक जिस मस्तक भाग शब्द सखी सहेली गर्भ गहेली सुन सा की एक बात सोहेली जो मैं बेदना सा किसे आखा माई हर बिन जी

जानी, हर बिन जियो ना रहे कैसे राखा माई राउ, हों दुहागन खरी रंजानी, गया सो जोबन धन पछतानी, तू दाना साहब सिर मेरा, खिजमत करी जन बंदा तेरा, भणत नानक आंदे साए ही, बिन दर्शन कैसे रवो सनेही, मारू महला पहला, मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नहो सुभागा, गुर की चरनी हाट बिकाना, जित लाया तित लागा, तेरे लाले क्या चतुराई, साहिब का हुक्म ना करना जाई राव मां।

भगत करो तेरी राया, पियता पानी आनी मीरा, खाए ता पीसन जाओ, पखा फेरी पैर मलोवा, जबत रहा तेरा नाओ, लून हरामी नानक लाला बख्शे तुद वड्याई, आद जगार दया पत दाता तुद बिन मुक्त ना पाई, मारू महला।

किया, जे तू दे तिसे क्या चारा, जन नानक शरण तुम्हारी जियो। मारू महला तीजा घर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जय बसाले तह।